दुखी ब्रह्म न कोई एका घर मा थी ए दलित्री थी ए बालक चीना पुत्र उनका आपू दुई दंपति सला।

आए फेरी वरुणजी दृढ़रूप धारी, पूजा करे निरपति ले गरी भौती बारी। विनती करे वरुण को सवदात आओस, यो पुत्र यज्ञ पशुलाए कहो जाओ। दातै नउम्रिदिनु छैन बलि भनेर, देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्किआए, राजा खुसी भइ नुहारन।

कश्या माता कश्या पिता कश्या भाई कश्या श्रीमती कश्या छोरा कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्ग प्रसाद सेवापति कानून से साथ श्रृंखली शिवसारा सुदामा की नारी करत दिन भारी विपत्ति ले पति चे ऊंचाई बिनती दर चिंता पिटरले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली हर बंकन कहुंच ज्योति समना देवी के ही सौगर मन देव चंगा करिकुन निदंशु द्वारी का हर्षित मुलाका नगर में विचार वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ लगी गए प्रवेश के द्वारिका में
1: नारायण
0: जन्यो बालक ओ जन्यो बालक ओ जगमग करने मन चित हरने जन्यो बालक नारायण हो किनवाने देखी झेल मैं जो झेल पड़े बाबू बसुदेव देवकी दुवै झेल में छोरछोरी जन्म सके फिर कंस ले मर्चा भन्नी उता तीर भैया नारायण बैरा को चलेना।

आकाश मार्गरी कुजे राहन वारो एजी आकाशमा सीता जी कनवे की भाईजी जाना फेरा गंगा कई पाशमा पुनिया कलम

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सामदाई के बन में नाचनी छन मजूरा।
1: वन में जादा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तु को प्रयोग न गरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात न जलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौ।

0: sip on your extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैल सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़बाट म बदे प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2006 मे 21 तारीख ज्येष्ठ 7 गते बिहीबार पञ्चमी तिथि अब स्तुति गरौं।

मिकपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजाव भौतिक जगत में नहर द नारी ले प्रगति पथ को।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शङ्खका पाला भूषित करौ मालस्ती माला दरौ देवौ दरौ तिस्मा चानन निलौ नागरी गोवर्धन हो तिरी रक्षे बलि दक्षे।

नारद वंचन ए मुना गायरा शुद्ध वही व्रत वस शक्ति ले मधुबान रायरा।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: संग्रहत महाते पांडव वसुन कुमा वसुन कालिका गौरथ गरुण र दानवहरू नागमा रावणासिका सन्त।